गुरु अर्जन देव जी अपने शब्द विच फरमान कर देंगे। निंदक दी ए निशानी है, जदों किसे दा भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा, ते जदों किसे दा बुरा हुंदा वेखेगा उदों प्रसन्नता विच आंदे, खुशी विच आंदे।

धन गुरु तेग बहादुर सोच लै भाई धार लै अपने मन विच इसनो धार लै मतलब वसा लै मन विच सिर्फ चार दिनां दी गल है बंदा नाल तकबर भरिया कूड़े करदा माने मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आप नू जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नख तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ए बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदो सब कुछ ठीक है जदो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहता जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान हां पर एक दिन मंजे ते पै जे निढाल हो जाता है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन में ए राग सिंधी

तू मेरे प्यारो तो कैसी भूखा है, भाव मेरिया सारिया भूखा तेरे प्यार नाल ही दूरियां दूर होंदिया। सो नाम वाला जो है उसके नाल महाराज जी का प्यार है। इसे करके कहते हैं मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए। ए मेरे प्रीतम, प्रीतम बहुत प्यार दे नाल आख्या होया एक्सप्रेशन है। ए मेरे प्रीतम तेरा नाम जदों तक मेरे ध्यान च है मैं अपने आप नूं जिंदा महसूस करना, ते तो विछड़ना मेरे वास्ते मरण समान। तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा, और आखते हैं अमृत प्रिया का नाम। प्रिया प्यारा कहते हैं मेरे प्यारे का जरा नाम है ना वो अमृत है, वो मृत्यु तो रहत है, इतना महान है। सो इत्थे एक प्यारा आंदा है, इत्थे एक हस्ती आंदी है, इत्थे एक ऐसी शख्सियत आंदी है जिसके नाल महाराज जी का प्यार है, अते उस प्यार करके महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। सात संगत जी, मैं आप जी के सामने थोड़े जहे प्रमाण रखन लगा हां जिन्हां च बार बार बार बार लफज आएगा नाम प्यार, नाम प्यार, नाम प्यार, नाम प्यार। ध्यान नाल सुनना, एक ही लफज आएगा बार बार हरेक लाइन च, नाम प्यार। कहते हैं

गुरु महाराज जी के पास वो नाम वाला है, उस नाम वाले के नाल महाराज जी का प्यार है, उस दे नाल मोहब्बत है। इस करके गुरु महाराज जी नू उसका नाम प्यारा लगता है। इथों दो नुक्ते सिद्ध होंदे हन। नंबर एक कि गुरु महाराज जी का अगर उस नाम वाले दे नाल प्यार है

ए प्यार, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ताम भाव के हा काड़ा जी। ए प्यार, मेरा मन एक ही प्रेम मांग है, मेरा मन अपने उस एक प्यारे नु ही चाहता है, और कुछ चाहता ही नहीं है। ये है प्यार। उहा प्रेम प्री केंदन, ओ प्री जो प्यारा है, महबूब है, केंदे बस ओ उसका मेनु प्यार ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, इतना प्यार। एक सिनेरियो है कि परमात्मा कहता है कि आप जी प्यार दी जगह कुछ होर ले लो, प्यार ही क्यों मंगते हो, कुछ होर ले लो, और बहुत कुछ दे सकते हैं, की दे सकते हो, हीरे लाल जोहरात मान मोती बहुत कुछ दे सकते हैं, ए ले लो। महाराज जी आखते हैं, हम सुन वाला शब्द है, कहते अत्यंत चीजा खिलाड़ियां पई हैं सामने, ते अकाल पुरख पूछता है तुहानु की चीज चाहिदा है, ते विचकार ही एक थां ते उन्होंने प्यार रख्या है। ते महाराज जी आखते हैं उस वल उंगली करके, ओ उहा प्रेम प्री, कहते ओ प्री दा प्रेम ही चाहिदा है, कनक माणक गज मोतियन लालन, कनक यानी सोना, माणक कनक माणक स्टोन्स, बहुत कीमती कीमती स्टोन्स, कनक माणक गज हाथी, कनक माणक गज लालन डायमंड्स, कनक माणक गज लालन, नह नह नहीं, कहते नहीं, तीन बारी आख्या है, कहते इन्हों चो मैनू कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। कनक माणक गज मोतियन लालन, ना मैनू हीरे, ना मैनू पर्ल्स, ना मैनू स्टोन्स, ना मैनू डायमंड्स, कुछ नहीं चाहिए, की चाहिए है, उहा प्रेम प्री, सिर्फ तेरा प्रेम चाहिए। कनक माणक गज मोतियन लालन, नह नह नहीं, राज ना भाग, राज ना भागन, ना हुक्म ना साधन, किच किच ना चाहिए, कहते इन्हों चो मैनू कुछ नहीं चाहिए, तो यह है प्रेम। सो महाराज जी दे कोल है प्रेम, साडे कोल है कुछ भी नहीं, असी खाली हैं, साडे कोल की है, अंदर खाली प्रेम बेन, दैट्स व्हाट वी है। महाराज जी ने बाणी चाखे, अंदर खाली प्रेम बिन आओ सारे आखिए, ये साडी अवस्था है, ये साडी कंडीशन है, ये साडी हालत है। साडे कोल पहरावा हो सकता है सुंदर, साडे कोल रस्मो रिवाज सारे हो सकते हैं, साडे कोल आलिशान गुरुद्वारे हो सकते हैं, लेकिन साडे कोल जे है नहीं तो की नहीं, अंदर खाली प्रेम बिन, सारे बोलो इस पंक्ति नु, अंदर खाली प्रेम बिन, साडे अंदर प्रेम तो बिना खाली हैं। अते महाराज जी आखते हैं जिथे अंदर प्रेम नहीं है, कहते ओ इंसान ऐस जगत विच जिहा आया जिहा ना आया वो एक बराबर है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है। ते गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने भी आख्या है, साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। हुण सवाल पैदा होता है कि प्रेम हाउ टू गेट इट, किस तरह प्राप्त करिए, ये साडे अपने वस दी ते गल नहीं, असी तो अंदरों पत्थर बने पए, साडे अंदर ते कठोरता है, साडे अंदर प्रेम नहीं है। तो फिर एक दर्द उठती है, गुरु महाराज जी कृपा करके दसो साडे अंदर प्रेम का चश्मा किमें फुट सकता है, साडे वर्गियां दे दिलां दे विच जो कि सुके पए हन, सुन्ने हन अंदरों, खाली हन, साडे अंदर प्रेम लविंगनेस, ओ प्रेम का जो फुल है वह किमें खिल सकता है। अज दे कीर्तन सिर्फ इसका जवाब देना है कि नंबर वन चीज जानने वाली है कि नाम ते प्यारा ता ही लगेगा, नाम जपया उदों ही जाएगा जदों जिसका नाम है उसके नाल प्रेम भी तो पैदा होवे। हुण प्रेम किमें पैदा होएगा, गुरबाणी इसका किस तरह जवाब दिंदी है, उसनों सुनो, फिर असी कीर्तन अज का समाप्त करांगे। महाराज जी आखते हैं

जवाब है बाणी। संतां संगत मिल रहे क्योंकि तो संत प्रेम ही प्रेम हुंदे हैं, प्रेम रूप हुंदे हैं। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहते मेरी सारे नाल ही बनती है साधी, ध्यान नाल अपनी जिंदगी देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, साड़ी बनती किस दे नाल। पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई, कहते मेरी सारे दे नाल ही बना दी है, मैं सारे नाल ही प्यार है। कहते प्रेम किवें लग सकता है, इसनों सुनो और नोट कर लियो बाद दे विच। कहते हैं संतां संगत मिल रहे सच लगे प्यार। इस तो भी होर स्पष्ट सिंपल करके आख्या, कहते हैं संत सह

मैं उन्हां दे चरनी लगदा हां, मैं उन्हां दे पैरी लगदा हां। कहिंदे संत सहाई प्रेम के, संत ही हन जो हेल्पफुल हन, जो हेल्प कर सकदे हन, क्योंकि वो आप प्रेम दे नाल भरे होए हन, अते ओ क्योंकि प्रेम दे नाल भरे होए साडे अंदरों प्रेम जगा सकते हैं। इस करके कहिंदे मैं संतां दे चरनी लगदा हां, पर साडी ईगो तो सानू झुकनी ही नहीं दिंदी, असी तो किसी के चरनी लग ही नहीं सकते। पर बाणी तो आखदी है ना, साडे अजिहे कॉन्सेप्ट बन गए हैं कि असां गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो अलावा किसी ने मत्था नहीं टेकना, और उस दे नाल असी इतने हंकारी हो गए हैं कि कोई भी शख्सियत आ जाए, कोई गुणवान आ जाए, पर असी झुक नहीं सकते क्योंकि साड़ी ईगो ऐसी, और जब तक असी झुकांगे नहीं असी समझ लो पत्थर हैं, और पत्थर च भी कदे प्रेम पैदा हो सकता है। महाराज जी आपने हम संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागों पाए, जे पैरी लगना चरनी लगना गुरमत दे विच उल्ट हुंदा ते आपंक्ति क्यों लिखी हुंदी है? वो कहने हों तिनके लागों पाए, वो इतने महान हन कि वो प्रेम का ही सागर बने पाए हन, उना दे मैं चरना दे उते लगदा हां, चरनी लगदा हां, पैरां ते मत्था टेकदा। संत सहाई प्रेम के हां तिनके लागों पाए, सिर्फ ओही हन जो साडे जीवन दे विच प्रेम पैदा कर सकते हन। उसकी अगे चल के विचार कीती जाएगी अगले कीर्तन च कि ओ किवें करदे हन। प्रेम किवें प्राप्त किया जाए, हुण इस उत्ते प्रमाण चल रहे हैं। अगला प्रमाण कहिंदे हन, मन रे राम जपो सुख होए, कहिंदे हन मन रे राम जपो, पर महाराज जी राम नाल ते सारा प्यार ही नहीं है, उसनूं जपिए किवें? जब प्यार ही नहीं है उसनूं जपिए किवें? पहली अद्धी पंक्ति च आख्या है मन रे राम जपो सुख होए, उसनूं जप के सुख होएगा, पर जब उसदे नाल प्यार ही नहीं है तो उसनूं जप किदां लईए? ए मनुआ दहन स्थान दा, वो कैसे हर गुण गावे? ए मन ते दस दिशा दे विच दौड़ा फिरदा है, किवें उहदे प्रेम नाल गुण गावे? प्रेम ही नहीं है। पर अगली लाइन दे अद्धे हिस्से दे विच फिर जवाब दे जांदे हन कि प्रेम किवें मिल सकदा है। कहिंदे हन मन रे राम जपो सुख होए, परंतु अगला हिस्सा पंक्ति दा कहिंदे हन

राग गौड़ी भी सोरठ भी विच दोवें ऋषभ दोवें मध्यम दोवें निषाद अते दोवें धैवत सुर लगते हैं। इस दे अवरोह विच गंधार सुर वर्जित है। इस दी जाति संपूर्ण षाड़व वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच अब मोको भय राजा राम सहाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

अपनी खलकत दी इन्नी वड्याई नहीं कीती जिन्नी वड्याई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कीती। मैं रहां ना इत्थों तक कहता खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। किसी ने नहीं किया मेरा रूप।

निर्धन को पल ले, निर्धन को पल ले। पांच तरह का निर्धन पालना। पहला निर्धन पालना, गुरु का सिख दसवंध कढ़े। सारे झाती पायो, अगां अगां ज्यो प्रकरण आएगा, कोई माया का दसवंध नहीं कढ़ सकता। ए नहीं कि वह नहीं निर्धन पाल सकता, वह भी पाल सकता। ए अगे प्रकरण आणगे, जेड़े बंदगी वाले महापुरुष सारी जिंदगी जिन्हां ने लिखे लाई होवे गुरु दे, वह भी निर्धन नूं किहड़े ढंग नाल पालदे ने, उन्हां दा पालना किन्ना कु उच्चा है, असीं कितें पहुंच भी नहीं सकदे उत्थे। ओह अगां प्रकरण आउणगे। अज दा प्रकरण, पहला निर्धन नूं पालना, गुरु का सिख दसवंध कढ़े। सारे झाती पायो, इहदे विच कमजोरी ते नहीं। और दसवंध कढ़न तों बाद बड़ा सोच के ला ले, लाउणा किसे किसे गुरुद्वारे दी कार सेवा लई देंदा है, वो भी गुरु नूं पहुंचदा है। लंगर लई देंदा है, वो भी गुरु नूं पहुंचदा। अजकल तुहाडे चों कई बीबियां ककारां लई सेवा देंदियां, ककारां लई, ये भी गुरु नूं पहुंचदा।

दो कड़ियां बैठो तुसी फिर चले जाना ते मैं भी राजे कोल थोड़ी देर बाद चला जावां। भाई साहब लिखते ने।

फिर हिम्मत आई, फिर डिसिप्लिन आया, फिर सहबी आई, अमृत दी दात बख्शी गरीब नवाज पातशाह ने, ते फिर भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, गुरु कृपा ने जातां दा मौका दित्तियां। ध्यान दिओ जे, ध्यान दिओ जे, एक जट लिया, एक खत्री लिया, एक चीवर लिया, एक चींबा लिया, एक नाई लिया, ते सारयां नूं इक्को बाटे विच पलाया।

फुल ते फल दा जीवन जो बीज तो आरंभ होया वो की है अपने आप नूं धरती विच समा देना।

सचमुच जीवन की है, सिर्फ जन्म लेना ते मर जाना ही जीवन नहीं। जन्म लेके मरण तक जो समय कुछ करके विखाउणा जीवन है।

फिर मेरे सतगुरु ने वचन कर दिते, उपदेश दिता, साध संगत विच नाम जपे, गुरु मिल पे, उन्होंने वचन किए, उन्होंने वचना करके मैनू पता कि

भाई सात संगत विच जन्म होवे फिर सात संगत विच खुराक केड़ी मिलती होगी। जिसने जन्म लिया उसनु आहार भी चाहिए। आ माता कुखों जन्म देंदी है मनुख नु उसके आहार का भी इंतजाम है। जिवें जिवें वड्डा हुंदा उसकी खुराक मिलती है। ते जदों सात संगत की कुखों गुरमुख जन्म लेंदा है ते उसनु खुराक केड़ी दिती जांदी है? सतनाम श्री वाहिगुरु। उसनु खुराक केड़ी दिती जांदी है? सतगुरु जी खुराक दसदे ने की कहंदे ने।

जे सच्चे दे दरबार विच जाना होवे फिर सच वस्तु ही ना लेके जानी चाहिए, कूड़ नहीं लेके जाना चाहिए। ये सच है, कूड़ तो अंदर जाएगा भी नहीं, बाहर ही रोक लेंगे। ते कूड़ किसनु कहंदे? जिस वस्तु नाल नेहो करिए करतार विसर जाए वो कूड़े, जिस वस्तु नाल नेहो करिए परमात्मा चेते आ जावे वो सच्चे, तो सतनाम श्री वाई। हुण असीं फैसला करिए जिहड़ा असीं भोजन छकदे हां, जे तो इस भोजन छकण दे नाल परमात्मा चेते आउंदा ते सच, जे भोजन छकण दे नाल परमात्मा ही भुल जांदा ते आलस आके सो जांदे आ ते फिर भी कूड़े, ते सतनाम श्री वाई। जे असीं भोजन दे नशे विच इतना खाई जांदे आ कि परमात्मा ही विसर गया, सानू अपना खाना चेते, सानू हसना चेते, सानू पीना चेते, सानू सोना चेते और सानू मरना भुल गया, जब सतनाम श्री वाहिगुरु ते सानू साहिब भुल गया। खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना, कसम विसार खुआरी कीनी त्रिक जीवन नहीं रहना। ते फिर कहंदे ने की वस्तु लेके जाइए।

अवतार आया, ड्यूटी निभाई ते गया। समा बीतिया धरती ते फिर कष्ट आए, जुलम होए, अवतार आया ते गया, ड्यूटी दे। कहंदे आ पहली विशेषता ही धरती ते फिर समा आया, जुलम होए, कष्ट होए, इन्ने क ज्यादा सी अवतार भेजण नाल गल नहीं सी बननी। कहंदे हुण आप निरंकार आया, गुरु नानक दे रूप च पहली विशेषता ही फिर गया ही नहीं। दसां जामिया तो बाद शब्द रूप विच धरती ते टिक गया, दुनिया नूं तारण दे। बकायदा उसे तरह जोत टिकाई है। और किसे भी ग्रंथ नूं गुरु

माया। किसी को माया आज इसे संभाल भी हर हर कोई सकता है, हर कोई माया संभाल नहीं सकता। बाबा जी उच्चारण करते जिदे को ज्यादा माया आ जाए पर माया दे नाल नाल उदे मन दे विच गरीबी भी हो जाए थे, बहुत वधिया गल। पर बहुत मुश्किल ऐसे इंसान मिलते हैं कि जिन्हां दे हिरदे विच माया दे नाल गरीबी नाम अमृत वेले दा जागना होवे। पर कई तां इंसान माया दे विच ऐसा गफलत हो जाते हैं कि रब तो भी बेमुख हो जाते, नास्तिक बन जाते हैं हजूर उच्चारण करते।

मूर्ख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं।

अपने सह दे नाल अपने प्रभु दे नाल रते गए बाब जिन्ना ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया वो सारिया नू चंगे लगते ने क्यों जो हर का प्यारा सो सबना का

साहिब सफलियो रुखड़ा अमृत जांका नाम जिस तरह कोई काना दरखत होवे छां वाला फलां वाला आंदे जांदे राही दिओ दे थले बैठ के आनंद माणदे हन उड़दे होए पंछी भी उस दरख्त ते आके बैठते क्योंकि सुख मिलता है ते जड़ा साहिब है प्रभु है ए भी एक रुख है पर केड़ा अमृत इस दरख्त दा नाम है भाव जिस तरह फला वाले दरख्त ते पंछी आके बैठते ने सुख मानते ने इसे तरह जेड़े प्रभु दे प्यारे ने ओ प्रभु दा नाम जप के अमृत रूपी नाम जप के अपना

जा सिफत करी अरदास। कई लोग कहते जदों भी पाठ करन बैठिए, भजन करन वास्ते बैठिए, मन नहीं टिकदा। मन किस तरह टिके? जद मन विच विकार नहीं, मन दी पटकना ताही खत्म हो सकती है। मन दे परम ताही दूर हो सकते ने जे असी दिलों अरदास करिए और सच्चे मनो परमेश्वर दी सिफत सलाह करिए। कई कहंदे ने साडी अरदास पूरी नहीं हुई, सुखना सुखी सी पूरी नहीं हुई। जद अरदास करो, दिल दी गहराई विचों अरदास करो और सच्चे मन दे नाल परमेश्वर दी सिफत करो, अरदास भी सुनी जाएगी। मन दा धोखा परम वहम भी दूर होणगे।

बन जा, खनिए बन जा, तौ साहिब के नामी ऐ परमेश्वर, मैं तेरे दुबारी तेरे नाम तो कुर्बान जाना। तन गुरु नानक साहब जी बयान करते हैं, आओ अपनिया बिरतियां उस पास ले चली। गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते, बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे बैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नू मिले, नाल बेबे नानकी दे पति भाई अजय राम भी आए। बेबे नानकी जी पिता मेहता कालू नू मिल के अपनी माता माता तृप्ता नू गले लग के मिले, तेनू गलना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया, ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखी तू आई है, कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सहुरा साहब मेहता कालू जी के पैरां ते मत्था टेके, मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने, पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए, असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होंगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे पाइया लगते ने, जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने, पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे, जय राम तुसी आए हो, मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए, तां बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते, इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है, बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने। ता बेबे नानकी जी कहन लगे, हाली आए थे नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी, बहार ने आना होवे कुंजा दियां डारा पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा।

अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुला और प्यारे उड़ीकते पए ने इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल चुम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े होए और सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने हिस्सा दिलाई सत करतार ए सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया।

आप ही कदी कहंदे ने बेटा नानक ए चोला पा ले, आप ही फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे, मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया, लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां, सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग कुट के छाती ना लाया, अथरू किधे रुकन। कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रख दी है। फिर साहब जी कहन लगे, मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई, संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए। ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें मैं फिर मिलांगी।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो। बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते। पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लईआं कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ए नहीं हो सकदा। सतसंग ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ता कि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे। जे साढ़े हिरदे विच प्यार होवेगा साढ़े घर विच भी प्यार होवेगा। जिदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके है, चंगा पिता ना बन सके है, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके है, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके है, सत संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने

दुनिया विच जा रहे हैं, बंदगी कर, सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना, सचखंड बना। एक कथा कहानियां सुननियां हैं, अपने महापुरुषों के जीवन वाल देखना है। वो पति भी ने, पुत्र भी ने, वो भरा भी ने, वो सज्जन मित्र भी ने, वो गुरु भी ने, वो पीर भी ने, उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मना विच प्यार रखे, साडे मन विच प्यार होवेगा, अपने करदियां नू प्यार देंगे, लोकां नू प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड़े हो तुसी मेरे पैरा ते मत्था टेको ए नहीं हो सकता सात संग एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है इना गल्लां नूं कोई मन्ने भावे ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं किया मरदाने आ हुण तुसी जाके भाई अजय राम जी नूं लै के आओ शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछते ने बेटा किथे चले साहब जी कह लगे मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ओही जानता है जिसने ए प्यार किया भगत कबीर जी कहंदे सो कत जाने पीर पर आई जाके अंदर दर्द ना पाए भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती भगत रविदास वह भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहते ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले कि ए प्रेमा भगती दे तीर जड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने ओही जाने

के नाम तो बिना छुटकारा नहीं, नाम तो बिना कोई बाणी फड़न वाला, नाम तो बिना कोई वस्तु नाद नहीं जान वाली। इसलिए है कलगियां वाले पातशाह, हे दुष्ट दमन दाता, हे महान तपस्वी, हे मुकुंद दे निवासी सतगुरु, सानू जोड़ लै नाम दे नाल, सास ग्रास तेरा सिमरन करके, श्वास सफले करके, मुख उजला करके तेरे चरणा में जाई। जो गुरु के लाल श्री हेमकुंड साहब श्रद्धा और भावना दे नाल नाम जपदिया सेवा सिमरन परपकार करदिया जांदे हन, इस रस दा इस स्वाद दा उन्हां नूं ही पता है। निरंकार आप ही अपनी शक्ति बख्श के ऐसे कठिन रस्ते तो आप सहायता करके ले जांदा, औखी घाटी बिखड़ा पेंडा मेरे अंग संग होए सहायगी। जो सिमरन करदिया उथे पहुंचदे हन भाई, उन्हां दे चेहरियां दे रंग भी तब्दील होंदे हन। कोई नाम दा नूर चढ़िया हुंदा, नाम दी लाली हुंदी है उन्हां दे मस्त। ते फिर जी करदा है के होर जपां, जप जप के समा बितावां। इसलिए ए अरदास करदे हन।